0: Queen FM would like to thank the Community Broadcasting Foundation for their continued support by providing funding that helps this station remain on air. With local content, language programming and various music styles, the CBF assists Win FM to maintain technical quality.
1: जनगणना दी रात 11 अगस्त मंगलवार से हर घर ले जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करण ले हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ जा 1800-181-2272 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वल्लो अधिकारत
2: अपने सुपनिया दा घर बनाओ रिवर वॉक विच जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया दा एक प्रोजेक्ट वेर वी दे दिल विच स्थित इस जीवंत अते स्थापित कम्युनिटी दा हिस्सा बनो। खरीदारी आवाजाई अते पार्कलैंड दे नेड़े तुहाडा नवा घर रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल अते एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन तो सिर्फ पैदल दूरी ते है। इथे वक वक प्लॉट साइजेस उपलब्ध हैं। सिर्फ 5% डिपॉजिट नाल खरीदो। होर जानकारी लई अते अपनी रुचि दर्ज करन लई आज ही myriverwalk.com.au ते जाओ।
3: हाँ जी वापस आ गया तुसी सुन रहे हो सांझी वाज रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न। ते आज स्प्रिंग दा तीसरा दिन यानी कि 3 सितंबर हो गई है, दिन वीरवार। ते टेंपरेचर इस टाइम विक्टोरिया दा 11 डिग्री, कुछ वछना पैण की संभावना। हाईएस्ट टेंपरेचर जड़ा वो पहुँचेगा 17 डिग्री तक। कल दिन शुक्रवार टेंपरेचर 18 डिग्री हो सकता है। तो सैटरडे फिर 18 डिग्री टेंपरेचर ही रहेगा। संडे नू दिन एतवार जिन्हों आप कहने छुट्टी वाला भरपूर दिन, तो अगले दिन दिया तैयारियां, फिर सोमवार तो साड़ा हफ्ता शुरू होना हुंदा या, उस दिन भी 16 डिग्री टेंपरेचर ही रहेगा। सोमवार ठंडी सवेर होगी 15 डिग्री टेंपरेचर। तो ट्यूजडे नू फिर 16 डिग्री टेंपरेचर, वैनसडे नू 15 डिग्री, तो थर्सडे नू जड़ा वो 18 डिग्री टेंपरेचर होगा। मंडे जड़ा वो सब तो कोल्डेस्ट डे रहेगा। तो उस दिन पर असी तुहाडा बनावांगे दिन ते सवेर गर्मा गर्म, क्योंकि उस दिन तुसी सानू सुन सकोगे इसे प्रोग्राम दे विच। बट टाइम होगा 10 बजे तो लैके 12 बजे तक। प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न 88.9 विन FM तो। ते हर सवेर साडी जिंदगी नहीं बदलती, पर हर सवेर सानू कुछ बदलन दा मौका जरूर दिंदी आ। कई बार असी सोचते हाँ कि जदों सिचुएशन बदलेगी तो मैं उदों खुश होवांगा, जदों मैनू जॉब मिलेगी मैं सिर्फ उदों खुश होना है, जदों मैनू PR आवेगी, या फिर जदों घर खरीदांगे, जदों लोन घट होवेगा, तो जदों बच्चे सैटल हो जाएंगे फिर लाइफ इंजॉय करांगे। पर दोस्तों जिंदगी फिर विच नहीं हुंदी, जिंदगी अज विच हुंदी आ। इसलिए अज दी सवेर अपने आप लई एक छोटा जिहा वादा करो कि अज जो मेरे कंट्रोल विच आ मैं उस नूं चंगा करांगा, जो कंट्रोल विच मेरे कंट्रोल विच है ही नहीं उस नूं अपने सिर दा मैं बोझ नहीं बनावांगा, ते सानूं बनाउणा भी नहीं चाहीदा। इस तरह दीआं गल्लां बातां दे नाल आपां गल्लबात दी अज दी जारी रखांगे। प्रोग्राम दे विच गीत संगीत होवेगा, तुसी मेरे नाल सांझ पा सकदे हो। नंबर 0434-233-971 इहदे उपर तुसी व्हाट्सएप दे उपर मैनू मैसेज कर सकदे हो। ते मैसेज करके तुसी गीत सुनना होवे, किसी नू बर्थडे विश करनी होवे, या फिर कि तुसी अज दा दिन किस तरह बताउणा इह सांझ पाउणी होवे, नंबर फिर रिपीट कर दिंदे हां 0434-233-971। ते हुण फिर एक गीत हो जावे, बट उस तो पहला एक गल बहुत जरूरी, गड्डी चलाउंदे समय जे रोड्स वेट ने ते एक्स्ट्रा केयर करो। सिडनी, ब्रिसबेन, एडलेड, पर्थ ते होर सिटीज दे लिसनर्स नूं करो निकलन तो पहला अपनी लोकल जिहड़ी वैदर कास्ट आ उहदे उत्ते ते वार्निंग्स जिहड़ियां उह जरूर चैक करो। ते ब्रिसबेन वालियां लई ते सवेर काफ़ी वक्री आ, उत्थे सनी ते कंसिडरेबली वार्मर कंडीशनस ने, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਲਬਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਨ FM ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ।

0: जनगणना दी रात 11 अगस्त मंगलवार सी। हर घर ले जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करन ले हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ जा 1800-181-2227 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वल्लो अधिकारत।
1: अपने सुपनियां दा घर बनाओ रिवर वॉक विच, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया दा एक प्रोजेक्ट। वेर वी दे दिल विच स्थित इस जीवंत अते स्थापित कम्युनिटी दा हिस्सा बनो। खरीदारी, आवाजाई अते पार्कलैंड दे नेड़े तुहाडा नवा घर रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल अते एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन तो सिर्फ पैदल दूरी ते है। इत्थे वक-वक प्लॉट साइजेस उपलब्ध हन। सिर्फ 5% डिपॉजिट नाल खरीदो। होर जानकारी लई अते अपनी रुचि दर्ज करन लई आज ही myriverwalk.com.au ते जाओ।
2: हुण एक टॉपिक जेड़ा पंजाबी कम्युनिटी विच या असी कह सकदे हां कि माइग्रेंट कम्युनिटी विच हमेशा ही बहुत अटेंशन लैंदा है कि माइग्रेशन सब तो पहला एक रिक्वेस्ट जी। माइग्रेशन टॉपिक ते आपां गल करांगे बट उस तो पहलों एक रिक्वेस्ट या कि टिकटॉक वीडियो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक कमेंट नू वीज़ा लॉ नहीं समझना चाहिदा। इमीग्रेशन पॉलिसी विच छोटी डिटेल भी आउटकम बदल सकती है। इसलिए ऑफिशियल होम अफेयर्स इन्फॉर्मेशन या रजिस्टर्ड प्रोफेशनल एडवाइस वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आ। हुण कुछ करंट टॉपिक्स। ऑस्ट्रेलिया दे 2026-27 फैमिली माइग्रेशन प्रोग्राम विच फैमिली स्ट्रीम लई 52,460 प्लेसिस दे प्लानिंग लैवल दिता गया है ते इस विच प्लानिंग परपसिज़ लई 41,500 पार्टनर वीज़ा ते 3,500 चाइल्ड वीज़ा ते द एस्टिमेट जड़ा वो लगाया जा सकता है दिता गया है कि स्किल्ड माइग्रेशन साइड उत्ते भी जुलाई 2026 विच प्रोसैसिंग प्रायोरिटीज़ विच चेंज हुए ने। नवी मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 119 जो 25 जुलाई 2026 तो इफेक्टिव हुई ते सर्टन स्किल्ड वीज़ा प्रोसैसिंग प्रायोरिटीज़ नू गवर्न कर दिया। ऑफिशियल होम अफेयर्स इन्फॉर्मेशन मुताबक लॉ इनफोर्समेंट ते डिफेंस स्पोर्टिंग ऑक्यूपेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी विच ने ते उस तो बाद कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर ते टीचिंग ऑक्यूपेशन प्रायोरिटीज एरिया विच ने। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, प्रायोरिटी प्रोसैसिंग का मतलब वीज़ा गरंटी नहीं हुंदा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर भी मीट करने पेंदे ने ते एक जेड़े साडे लिस्टर ने वो पूछ सकते ने कि मेरा ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर विच है कि मेरी पीआर पक्की है नहीं। ऑक्यूपेंसी प्रायोरिटी एक फैक्टर है। वीज़ा एलिजिबिलिटी पॉइंट्स, नॉमिनेशन, इंग्लिश स्किल असैसमेंट, एम्पलॉयर रिक्वायरमेंट जेड़े भी रेलिवेंट क्राइटेरिया ने वो अपनी जगह पर कायम रहिंदे ने ते उन्हां सारिआं नूं सानूं पास करना पैंदा है। फैमिली वीज़ा विच भी प्रोसैसिंग प्रायोरिटीज़ जुलाई 2026 विच अपडेट हुई ने ते इस करके जे तुहाडी एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च्ड आ ते अजम्पशंस ना बनाओ। अपना ईमी अकाउंट, ऑफिशियल होम अफेयर्स इन्फॉर्मेशन ते जे लोड होवे तो प्रॉपरली क्वालिफाइड जड़ा माइग्रेंट प्रोफेशनल ने उन्हां दे नाल अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन चैक जरूर करो। ते एक होर गल, वीज़ा जर्नी दे दौरान जड़ा मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हुंदा है ते कई कपल्स वेटिंग विच ने, कई पेरेंट्स अपने बच्चों नू ऑस्ट्रेलिया बनाउणा चाहुंदे ने, कई स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी विच ने ते इस सिचुएशन विच एक एप्लीकेशन स्टेटस नू अपनी एंटायर सैल्फ वर्थ ना बनन दिओ। प्रोसैस इंपॉर्टेंट आ पर तुसी सिर्फ वीज़ा नंबर नहीं हो, जिंदगी जड़ी आ वो वीज़ा स्टेटस दे उत्ते डिपेंड नहीं करती। अपनी जिंदगी जड़ी आ उन्हों तुसी भरपूर जियो बट उदे नाल नाल अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लई जड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने उन्हां दा ध्यान जरूर रखो क्योंकि तुहाडी एक गलती तुहाडी जिंदगी दे उपर कोई इहो जिहा असर पा सकदी आ कि तुहाडा जिहड़ा इत्थों दा वीज़ा स्टेटस आ उह चेंज हो सकदा। सो इन्हां गल्लां नूं याद जरूर रखो, जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने उहनां दे उपर काम जरूर करो, वीज़ा स्पैशलिस्ट जिहड़े ने माइग्रेंट स्पैशलिस्ट उहनां दे नाल गल जरूर करो, बट अपनी जिंदगी जिहड़ी आ उहनूं भरपूर वी जियो। और ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਰੇਡੀ ਪੀ ਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
3: ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ,
4: ਤੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ